0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allah.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: रामचंद्र, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: आबादी अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, hello, Banaras.
4: अलर्ट,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: रामचंद्र, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अ लड़का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: शनिवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM। हेलो बनारस दुहावली
1: 91.2 FM। हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras, Duhawali.
0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना
4: गुरु वाणी
5: मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, जो जो आपने अपना मान रखा हो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे, वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना, और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया। उसी समय करो सद्य, सद्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है।
4: गुरु वाणी
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना
0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना
2: गुरु वाणी
4: रहो न कबहू कतहू कछु मेरो अपनो काम। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था, इस संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है, आओ इधर। हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तरी जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना। उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देख ला, अगर विवेक ले तो सब फंसे हुए तो उसी में है।
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना
0: 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।
5: हेलो बनारस, दुहावली।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Guru Bani.
3: श्रीमानंद जी महाराज कहते हैं,
4: क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। आप आए हो, हम संत हैं, तुम्हारा हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये हम देखेंगे तो हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये संसार से आए हुए गृहस्थी जन हैं और हम भगवत मार्ग में चलने वाले संत हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य, कभी गुस्सा नहीं आएगी। आप गाली भी दोगे ता तो जैसे अपना बच्चा छोटा तुलतुला के गाली दे तो क्या करेंगे, दुलारी करेंगे ना।
0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: ईश्वर की ओर
4: उपासना।
3: शनिवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2

0: घर दीन्हे घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बिन बीच रहूं, राम प्रेम पुरछाए। अर्थात यदि मनुष्य एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वह वहां की माया ममता में फंसकर उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य घर छोड़ देता है तो उसका घर बिगड़ जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भगवान राम के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, पर आसक्त किसी में ना रखो। हेलो बनारस दुहावली
1: 91.2 FM, हेलो बनारस पक्का बनारसी
2: पक्का बनारसी।
3: गुरु वाणी श्री श्री रविशंकर कहते हैं,
4: गुरु जी भगवान से कितनी प्रार्थना करनी चाहिए और कितना मांगना चाहिए?
5: ये तो तुम पर है, जो बुद्धिमान हो तो एक ही चीज मांगेगा, भगवान मुझे अपना लो। ये बुद्धिमान है, और थोड़ा इससे कम बुद्धिमान है तो वो मांगेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ज्यादा नहीं। और कम बुद्धिमान हो तो बहुत कुछ चाहिए मांगता ही रहेगा, और बिल्कुल ना समझ हो तो उसको याद भी नहीं रहेगा क्या मांगा है मैंने।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस पक्का।

0: शनिवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी
2: पक्का बनारसी।
3: राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिध बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ और मोक्ष की आशा करता है, वो तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है।

0: हेलो बनारस दुहावली
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी
2: पक्का बनारसी।
3: हरिओम तत्सत का अर्थ है हरिओम ही सच्चा है, सत्य ही ईश्वर है और यही है सबसे बड़ा संतोष धन। लेकिन ये संतोष धन आखिर पाता कौन है? वही पाता है जिसे भगवान की कृपा पर अपार भरोसा हो। जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह भगवान की कृपा पर छोड़ देता है उसे फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे समर्पित भक्त का सबसे बड़ा धन है राम का नाम। भक्त शिरोमणि मीराबाई के मन में भी उस राम रतन धन के लिए ऐसी चमक समा गई थी कि उसके दुख के अंधेरे न जाने कहां विलीन हो गए थे। बस मीरा थी और उसके साथ था उसका राम रतन धन, ऐसा धन जिसे न कोई लूट सकता है न कोई मिटा सकता है।

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi, Pakka Banarsi.
2: शनिवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
0: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
3: डॉक्टर साहब, मेरे फोन का सिम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं?
2: ओह, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यार, अभी तुम्हारा सिम बहुत छोटा सा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, फिर वो चलना भी सीख जाएगा भाई।
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
2: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
5: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
6: पंक्ति यात्रा, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तब तक दूसरी कठपुतलियां बोली कि हाँ हाँ हाँ हाँ, क्यों है ये धागे हमारे पीछे आगे, हमें अपने पांवों पर छोड़ दो, इन सारे धागों को तोड़ दो। बेचारा बाजीगर हक्का बक्का रह गया सुनकर, फिर सोचा अगर डर गया तो ये भी मर गई, मैं भी मर गया। और उसने बिना कुछ परवाह किए जोर जोर धागे खींचे, उन्हें नचाया, कठपुतलियों की भी समझ में आया कि हम तो कोरे काट की हैं, जब तक धागे हैं बाजीगर है तब तक ठाट की हैं, और हमें ठाट में रहना है, यानी कोरे काट की रहना है।
7: प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, मिश्र द्वारा रचित है।
8: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान, डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से, कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
9: 91.2 FM हेलो बनारस,
10: हेलो बनारस।
11: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
9: 91.2 FM हेलो बनारस,
10: हेलो बनारस।
12: बेटा A+B का होल स्क्वायर क्या है?
13: A²+B²+2AB।
12: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
14: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
9: 91.2 FM हेलो बनारस,
10: हेलो बनारस।

0: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
1: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
0: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
1: ड्रो आज्ञा महाराज।
0: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
1: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
2: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: 91.2 FM हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।
6: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
7: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
6: अरे बेटा,
7: ये क्या कर रहे हो अंकल?
6: सुनो
7: गलत
6: तो,
7: है ये।
6: अरे सुनो बेटा
7: अंकल।
8: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
4: 91.2 FM हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
9: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी

खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सी

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है

0: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
1: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
5: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
7: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
8: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
7: अरे बेटा
8: क्या कर रहे हो अंकल?
7: सुनो
8: गलत है ये।
7: अरे सुनो बेटा
8: अंकल।
0: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: अच्छा नहीं तो जाओ, जाओ, अरे जाओ ना।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: खल्ली

0: जाए पट्टी
1: क्या
0: थोए परेशान
1: हाथ छोड़।
0: आई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: आशिकू
1: रास्ता छोड़।
0: अरे एक बार पकड़े तो छोड़ते नहीं, उठा को ले जाते जालिम।
1: हट जा नहीं तो मारूंगी।
0: हल्लू हल्लू मार तेरी खल।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क

0: इलाज के लिए CGHS योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निःशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
1: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
2: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
1: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
0: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
3: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
3: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Panti Yatra.
3: Ja, tere swapna bade ho. Bhavna ki god se utar kar, jald prithvi par chalna sikhe. चांद तारों सी और प्राप्त ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए अपने पांव पर खड़े, जा तेरे स्वप्न बड़े।
2: प्रस्तुत पंक्तियां दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा।
4: चलो चले शिव के धाम, कांधे पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
5: उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
4: कावड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
5: कावड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
4: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
7: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
6: अरे बेटा,
7: ये क्या कर रहे हो अंकल? गलत है ये।
6: अरे सुनो बेटा।
7: अंकल,
8: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
9: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
10: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
9: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
11: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
12: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
13: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
12: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
11: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।
12: भाई क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
9: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
14: अरे भाई और तेज भागा।
8: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
0: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi, Pakka Banarsi.
2: 91.2 FM. Hello Banaras पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी. Oh ho ho ho, what a busy day.
3: डॉक्टर साहब, ये प्रिस्क्रिप्शन किसे दिया जाता है?
2: व्हाट अ लाइक कमेंट शेयर वाला क्वेश्चन. देखो यार, जिसकी लाइफ का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं भाई. 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी. ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई.
4: पंक्ति यात्रा. सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते. विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है. पंक्ति यात्रा.
0: 91.2 FM. हेलो बनारस,
1: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी.
5: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे.
6: अंकल आती हूँ अंकल. अरे
5: अरे बेटा,
6: ये क्या कर रहे हो अंकल?
5: अरे सुनो
6: गलत है ये.
5: अरे सुनो बेटा
6: अंकल.
7: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है. अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें. पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी.
8: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम.
9: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है.
8: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार.
9: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है.
8: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं.
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी.
10: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
11: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी.
10: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी. आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता.
12: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर.
13: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
14: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB.
13: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
15: है ना. मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में. अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा. नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी.

0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
1: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
0: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त अमीषा। दोस्तों, आज स्टूडियो में आने से मुझे थोड़ी देर हो गई ना, लेकिन यकीन मानिए उसकी वजह भी बहुत खास है।
3: अरे भाई अमीषा जी, देर से आई है तो कारण भी बताना पड़ेगा।
2: उसकी वजह भी बहुत खास है।
3: अरे भाई अमीषा जी, देर से आई है तो कारण भी बताना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना, रास्ते में वो चौराहे पे बैठ के चाय समोसा कर रही थी?
2: नहीं नहीं सेहतिया जी, आज तो मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते देर कर बैठी। गांव की चौपाल के पास पहुंची तो देखा कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा कोई पंचायत होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो आप लोगों को कुछ समझा रहे थे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वहां सिर्फ

0: महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी बड़ी गंभीरता से आपकी बातें सुन रहे थे।
1: इसका मतलब तो यही है अमीषा जी कि आप चोरी छिपे हमारी बात जो है सुनती रहती हैं।
0: बिल्कुल भाई, अब हक है हमारा। और तो पहली बात जो सुनी ना मैंने, उसने तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने कहा था कि अगर परिवार दो लोगों का है तो उसकी जिम्मेदारी भी दो लोगों की है। बस फिर क्या था, मैंने वही तय कर लिया था कि आज का कार्यक्रम इसी विषय पर होगा।
2: बहुत अच्छा किया अमीषा जी, क्योंकि आज का दिन भी इसी चर्चा के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है।
0: जी श्रोताओं, आज हम विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सिहतिया जी सच बताइए, जैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस का नाम आता है लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि क्या आज फिर जनसंख्या कम करने की बात होगी।
2: और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ अमीषा जी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। आज विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब केवल लोगों की संख्या गिनना नहीं है भाई, इसका मतलब है हर आदमी को स्वस्थ जीवन मिले, हर युवा को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिले और हर परिवार अपने भविष्य से जुड़े हुए फैसले बहुत ही ज्यादा समझदारी से ले।
0: यानी कि अब बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी की भी है।
2: हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात बोली है। सोचिए अमीषा जी कि अगर किसी परिवार में माँ स्वस्थ नहीं है, बच्चों का पोषण सही नहीं मिल रहा है, युवाओं को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा है और बिना जानकारी के फैसले लोग लेते जा रहे हैं, तो केवल जनसंख्या की संख्या देखकर क्या फायदा होगा। अरे असली विकास तो तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, शिक्षित हों और अपने जीवन से जुड़े हुए निर्णय खुद ही ले सकें।
0: और शायद यही वजह है कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का विषय युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर भी देता है।
2: बिल्कुल सही, आज दुनिया यह कह रही है कि युवाओं का केवल भविष्य मत कहिए बल्कि उन्हें आज से ही अवसर दीजिए, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, सही जानकारी और अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले लेने का अधिकार, यही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन सिहतिया जी, लोग तो कहते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी बात लोगों की क्षमता है।
2: बिल्कुल अमीषा जी, आबादी अपने आप में समस्या नहीं होती है। देखिए, समस्या वह आबादी तब हो जाती है जब लोगों को अवसर न मिले। अगर युवा स्वस्थ रहेंगे, पढ़े लिखे होंगे और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: यानी कि हमें लोगों की गिनती से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
2: बिल्कुल अमीषा जी, और इसी सोच के साथ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी बरसों से चल रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था।
0: लेकिन लोग आज भी परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ दो बच्चे या जनसंख्या नियंत्रण समझते हैं।
2: जबकि अमीषा जी देखिए, हालत कुछ अलग है, इसका असली उद्देश्य कुछ एकदम अलग है। परिवार नियोजन का मतलब है कि पति पत्नी मिलकर यह तय करें कि उन्हें बच्चा कब चाहिए, कितने बच्चे चाहिए और दोनों बच्चों के बीच में अंतर कितना रखना चाहिए। इससे माँ की सेहत बेहतर रहती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और पूरा परिवार बेहतर जीवन जी पाता है।
0: यानी कि परिवार नियोजन किसी मजबूरी का नाम नहीं बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला है।
2: बिल्कुल अमीषा जी, एकदम समझदार हो गई आप भी मेरी तरह। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह फैसला दोनों मिलकर लें। आज भी कई जगहों पर लोग सोचते हैं कि गर्भधारण, प्रसव और परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार तो दोनों का है, इसलिए जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए।
0: सच कहूँ तो हमारे समाज में अक्सर पुरुष इन बातों से दूरी बना लेते हैं। अस्पताल जाना हो, गर्भावस्था की जांच हो, आयरन की गोली हो या परिवार नियोजन की बात अक्सर कहा जाता है कि ये तो महिलाओं का मामला है।
2: अच्छा देखिए, यहीं पर सोच बदलनी सबसे जरूरी है। एक जिम्मेदार पति केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता है।

0: वह अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था की जांच के लिए भी जाता है। यह भी देखता है कि पत्नी समय पर पौष्टिक भोजन खा रही है कि नहीं खा रही है, आयरन फोलिक एसिड की गोली ले रही है कि नहीं ले रही है, और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचने की तैयारी भी सबसे पहले ही कर लेता है।
1: यानी कि एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत पति पत्नी दोनों की साझेदारी से होती है।
0: एकदम सही बात है। और यह साझेदारी केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं है मीसा जी, बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण करवाना, माँ को आराम मिलने देना, स्तनपान में सहयोग करना, बच्चे की देखभाल करना और आगे परिवार नियोजन पर मिलकर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है।
1: लेकिन सहदिया जी, कई बार पुरुष कहते हैं कि परिवार नियोजन तो महिलाओं के लिए होता है, हमें इससे क्या लेना देना।
0: देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, हमको यही बड़ा तकलीफ रहता है। परिवार नियोजन महिलाओं का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का विषय है। जब पति पत्नी मिलकर योजना बनाते हैं तभी माँ स्वस्थ रहती है, बच्चा स्वस्थ रहता है और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।
1: अच्छा, आपने आर्थिक मजबूती की बात कही, और इसका परिवार नियोजन से क्या संबंध है?
0: देखिए, बहुत ही गहरा संबंध है। सोचिए, अगर परिवार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की योजना बनाता है तो हर बच्चे की पढ़ाई, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है। परिवार की आय का सही उपयोग होता है और भविष्य की योजना बनाना भी बहुत आसान हो जाता है।
1: यानी बात केवल बच्चों की संख्या की नहीं बल्कि उनके बेहतर अवसर देने की भी है।
0: और यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा संदेश है, हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिले। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि परिवार के फैसले जानकारी के आधार पर लिए जाएं, न कि अफवाह और सामाजिक दबाव के आधार पर।
1: सहदिया जी, आपने जानकारी की बात कही, लेकिन आज भी कई लोग परिवार नियोजन के साधनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं।
0: देखिए, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, एकदम सही बात है। और शायद यही कारण है कि हमें खुलकर इन विषयों पर बात करनी होगी, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की पहली सीढ़ी होती है।
1: तो फिर आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि परिवार नियोजन के कौन कौन से सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं, कौन सा साधन किसके लिए उपयुक्त हो सकता है, पुरुषों की भूमिका क्या है, युवाओं के लिए सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है, और आखिर स्वस्थ परिवार का रिश्ता स्वस्थ समाज से कैसे जुड़ा है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब जानकारी सही होती है तो फैसले भी सही होते हैं, और सही फैसले ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत देश की नींव बनते हैं।
1: सहदिया जी, आपने अभी कहा कि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है, लेकिन आज भी गांव में कई लोग कहते हैं कि भगवान जितने बच्चे दे उतने अच्छे, ऐसे में परिवार नियोजन की बात करना क्या सही है?
0: देखिए अमीषा जी, हम यह कहते हैं कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति भी तो दी है। अगर परिवार अपनी परिस्थितियों, माँ की सेहत और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले तो यह भी उतनी ही समझदारी की बात है। परिवार नियोजन का मतलब बच्चों से दूरी बनाना नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों को बेहतर जीवन देना है।
1: यानी कि परिवार का आकार नहीं बल्कि परिवार का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: एकदम दुरुस्त बात है, और यही कारण है कि सरकार भी हमेशा कहती है परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या कम करना नहीं बल्कि मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। देखिए, जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश का भविष्य भी मजबूत होगा।
1: लेकिन आज भी कई महिलाएं कहती हैं कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती, फिर भी कोई गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं कर पाती, ऐसा क्यों होता है?
0: देखिए अमीषा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। कई बार जानकारी की कमी होती है, कई बार डर होता है, तो कई बार परिवार या समाज का दबाव भी होता है। कुछ महिलाओं को साधनों की जानकारी नहीं होती है, कुछ को लगता है कि इनसे नुकसान होगा, और कई बार पति की सहमति न होने के कारण भी वो कई साधन अपना नहीं पाती हैं। इसलिए केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी जागरूक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु, और बात करते हैं हम लोग बड़ी खास सेहत सही लाभ कई। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सभी लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी बात पर, विशेष किसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं जिससे हमारे जीवन में परेशानियां कम हो सकें, क्योंकि ऐसे ही हमारे जीवन में झंझावात बहुत है। इसी क्रम में जनसंख्या विस्फोट जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, तो आज हम बात करेंगे अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित है। मैं सुधांशु आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं, और हमारे साथ हैं जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने के लिए डॉक्टर आर के पांडे साहब, पूर्वांचल के प्रसिद्ध चिकित्सक। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वनास 91.2 एफएम पर।
3: नमस्कार आपके सभी दर्शक को मेरी तरफ से बहुत ढेर ढेर नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छी टॉपिक के ऊपर बात किया कि जनसंख्या पहले तो हम जान जाए कि पॉपुलेशन को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। पॉपुलेशन हमारे किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट भी है, बिटली कोई भी चीज अगर अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान भी पहुंचाएगी। तो जब जनसंख्या नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या विस्फोट हो गया तो आपके लिए वो बर्डन का काम करेगा। विस्फोट ही वर्ड अपने आप में बता रहा है कि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिस रफ्तार में कोई भी कंट्री का जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के हिसाब से रहेगा तो वहाँ के लोग अच्छे से हैं, अगर नहीं है ज्यादा हो गया तो सब संसाधन कम होने लगेंगे। जैसे पहला ही चीज ले लीजिए, बेसिक होता है लाइफ के लिए, जीने के लिए तीन बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी के लिए तो आपको चाहिए कि प्रोडक्शन हो, अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए तो आपको उस हिसाब से खेत चाहिए। तो खेत का अनुपात अगर व्यक्ति के अनुपात के हिसाब से रहेगा तब तो तकलीफ नहीं है। पता चला हमारा अनुपात, खेत का अनुपात व्यक्ति के अनुपात के बीच में बहुत कम हो गया तो लोगों को फूड की स्कैर्सिटी आ जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। अब जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो हर चीज का विवाद उत्पन्न होगा, कोई उनकी चोरी करेगा, कोई उनकी चोरी करेगा, कोई उनका हिस्सा आना एडॉप्ट करेगा, तो इन सबसे झगड़े बढ़ेंगे, देश जो होता है वो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी चीजें हो गई कि जब भी कोई सरकारी योजना बनाएगी जब तक वो बना के उस पर इम्प्लीकेट करने जाएगी तब तक वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो कभी भी सरकार और जनता के बीच का जो एक रेशियो वो मेंटेन नहीं हो पाता। हम देखते हैं अक्सर, अभी भी हम आप देख रहे हैं कि सरकारें बहुत योजनाएं बनाती हैं लेकिन वो धरातल पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाती। अगर वो धरातल पे अच्छा नहीं काम करती है तो बात यह है कि 2010 में जो बनेगी एक योजना बनेगी, इम्प्लीकेट होते होते 2014 में इम्प्लीकेट हुई, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 2014 में इम्प्लीकेट होगी तब तक जनसंख्या क्या हुआ कि वन फोल्ड बढ़ गया। आज जनसंख्या 100 करोड़ थी, कल जनसंख्या 120 करोड़ हो गई 4 सालों में, फिर अगले 4 सालों में 140 करोड़ हो गई। तो जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा हर 4 सालों में होते रहेंगे तो आपकी योजना तो ऐसे ही 20 करोड़ों के लिए कम हो गई। तो जनसंख्या अगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो कभी भी आपकी योजनाएं सफल नहीं होगी। आप बच्चों के एजुकेशन से ले लीजिए, आपने 10 विद्यालय रेडी किया
2: जी,
3: अब 10 विद्यालय में 10,000 बच्चों का रेडी किया, तब तक उस एरिया में बच्चों की जनसंख्या बढ़ गई तो उन बच्चों को फिर वही स्कैर्सिटी हो गई, है ना। तो कहने का मतलब है जनसंख्या का अनुपात रहे, जनसंख्या देश के लिए जरूरी भी है, जनसंख्या का विस्फोट ना हो, यानी जिस रेशियो में देश के लिए और समाज के लिए इम्पोर्टेंट है जनसंख्या उसी देश है कि नहीं।
2: तो यानी कि आपका ये मानना है कि अगर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है तो जनसंख्या का कंट्रोल होना जरूरी है।
3: यस, आपकी इस बातों से मैं एकदम एग्री करता हूँ कि अगर किसी भी देश का विकास होना है तो उसका जनसंख्या उसके क्षेत्रफल उसकी संसाधनों के हिसाब से होना चाहिए। जैसे एक हमारा है कि कोई एक व्यक्ति दो बच्चे या एक बच्चे पैदा करता है, कोई एक व्यक्ति 5-10 बच्चे पैदा करता है, तो उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि आपके बच्चे को भी उतना ही अधिकार है इस जीवन को जीने का जितना कि जिसने एक बच्चे पैदा किया है। अब कोई मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, एक व्यक्ति जो मंथली 20,000 रुपए कमा रहा है, मैं बहुत बेसिक सी बात बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ कि कमाने के लिए लोग बहुत कमा सकते, एक व्यक्ति 20,000 रुपए कमा रहा है, उसके पास एक बच्चा है, तो उस एक बच्चे या उसके पास दो बच्चे हैं तो उसके एजुकेशन को मैनेज कर सकता है, बट उसके पास अगर 10 बच्चे हो गए तो कैसे, तो खाने के लिए ही नहीं हो पाएंगे, तो उसको एजुकेशन कहाँ से देगा। जब उसने उनको एजुकेशन नहीं दिया तो वो बच्चे क्या होंगे, हमेशा स्कैर्सिटी में रहेंगे, शिक्षा के अभाव में रहेंगे, शिक्षा नहीं है तो अच्छे जॉब के अभाव में रहेंगे, अच्छा जॉब नहीं है तो उनकी अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, उनको कहीं भी अपने को सर्वाइव करने के लिए सेटल करना पड़ेगा, तो वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चीजें हैं, तो एक स्वस्थ जनसंख्या देश का, एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ देश को उत्पन्न करता
2: है। यानी कि जनसंख्या के पीछे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर है जनसंख्या को कंट्रोल में करने के लिए एजुकेशन।
3: यस, बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेट ना होने के केसों में कुछ लोग, बहुत सी चीजें आप तो जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं इन चीजों को, और समाज भी जान रहा है कि कुछ लोग बरगला के चीजों को या कुछ अलग अलग भ्रांतियों में फंसा के उन लोगों के ऊपर बच्चा उत्पन्न करने के लिए थोप देते हैं, जो बेचारे उस बर्डन को सह नहीं पाते। हमारा जो शिक्षित समाज है वो तो बच्चे पैदा करने से भाग रहा है, जबकि बच्चे उनको पैदा करना चाहिए, उनके पास संसाधन है, लेकिन जो हमारा अशिक्षित समाज है वो बच्चे पैदा कर रहा है जिनके पास संसाधन ही नहीं है। तो आपको एक डाइवर्सिटी समाज में देखने को मिलेगा
2: जी।
3: और उस डाइवर्सिटी के नाते स्कैर्सिटी और बढ़ रही है, और ज्यादा तकलीफें बढ़ रही हैं, है ना। एजुकेशन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि आप किसी से कितनी भी जबरदस्ती कर लेंगे वो मानेगा नहीं जब तक कि उसको एजुकेट नहीं करेंगे। उसको एजुकेट करेंगे तो डेफिनेटली एजुकेशन के बाद उसको समझ आएगा कि बच्चे पैदा ही करना नहीं है, बच्चों को अच्छा जीवन देना है
2: जी, अच्छा भविष्य।
3: हाँ, बच्चे किसी तरह के हमारे लिए वो नहीं है कि संसाधन नहीं है कि उनको यन नंबर में पैदा कर दिया और रास्ते पे छोड़ दिया। अब देखिए, जिनके पास घर नहीं है, 10 बच्चे हो गए, अब वो कहाँ रहेंगे
2: जी।
3: सरकार घर देगी तो एक देगी, एक कमरा दो कमरा देगी, फिर 10 बच्चे कहाँ रहेंगे, तो आपको रोड पे कहीं मिलेंगे, आपको कहीं पे टेंट लगा, सरकार ने की कोई खाली जमीन है रेलवे की
2: जी।
3: कोई योजनाओं की खाली जमीन है, वहां पे भरे पड़े मिलेंगे, है ना। तो एक तरह से उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको संसाधन की जरूरत है। अब वो संसाधन की जरूरत अपने से तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, किसी चीजों को एक्वायर करना चालू करेंगे। इससे क्या होता है, देश के विकास में हमेशा बाधा रहती है कि नहीं। तो जनसंख्या का कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ जनसंख्या होना बहुत जरूरी है। और इसको आप देखते होंगे, बहुत से यूरोपियन कंट्री ने बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया, इसलिए वो अच्छा, हम देखते हैं कि जो लोग भी घूम के आते हैं बोलते हैं यूरोपियन कंट्री बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्री का रेशियो क्षेत्रफल के हिसाब से कम है, तो क्लीन होना स्वाभाविक सी बात है, और एजुकेट हो गए हैं तो अपनी चीजों को जानते हैं, सिविक सेंस डेवलप कर लिए। हमारे यहाँ क्या है कि रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, हमको क्षेत्रफल कम है, हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं। आज हम पूरे देश की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के सबसे आबादी वाली कंट्री है, हमने चाइना को भी बीट कर दिया है। चाइना तो क्षेत्रफल में एक नंबर पे होने के बाद उसका एक नंबर पे जनसंख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्षेत्रफल के 7वें नंबर पे हैं, उसके बाद हमारा जनसंख्या पहले नंबर पे, तो हम सफर क्यों नहीं करेंगे। तो इसके लिए सरकार को हम दोष देना बंद करके स्वशिक्षित होना, और समाज का एक कर्तव्य है कि सरकार को केवल दोष न दे, इसमें समाज का इन्वॉल्वमेंट होता है। सरकार कितनी कर सकती है, सरकार आपके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकती, सरकार एक अच्छा नियम कानून एक अच्छा वातावरण बना सकती है, लेकिन एजुकेट तो आपको स्वयं होना पड़ेगा।
2: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने डॉक्टर आर के पांडे साहब से ली, आप हमारे साथ बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सुधांशु जी, आपने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, आपको दर्शकों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।
2: तो अभी हम बात कर रहे थे पूर्वांचल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आर के पांडे साहब से जनसंख्या विषय पर। हेलो बनारस 91.2 एफएम पर हम लेते हैं आप सबसे विदा। अगली बार हम होंगे एक नई कड़ी, एक नए अंक में सेहत सही लाभ कई। फिलहाल देखते और सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 एफएम, क्योंकि यही है पक्का बनारसी।
1: यानी कि अगर पति पत्नी दोनों खुलकर बात करे तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं।
0: एकदम सही बात है। परिवार में बातचीत, देखिए ना अमीषा जी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब पति पत्नी मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं तभी परिवार नियोजन सफल हो पाता है।
1: सेहतिया जी, आपने पहले बच्चों के बीच अंतर रखने की बात भी कही थी, आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
0: देखिए अमीषा जी, इसका कारण तो है ये है, क्योंकि माँ का शरीर भी देखिए आराम चाहता है। अगर एक बच्चे के तुरंत बाद दूसरा बच्चा हो जाए तो माँ को पूरी तरह स्वस्थ होने का समय ये नहीं मिल पाता है। इसमें माँ में खून की कमी, कमजोरी और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अगले बच्चे के कम वजन के साथ जन्म लेने पर या समय से पहले जन्म लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए जो विशेषज्ञ लोग हैं ना, वो लोग सलाह देते हैं कि दो बच्चों के बीच लगभग 3 साल का अंतर रखना माँ और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है।
1: यानी ये केवल परिवार की सुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी सवाल है।
0: एकदम सही बात, देखिए कितना सही सही बात आप बोलने लगी हैं। और यही बात जितनी महिलाओं को समझनी चाहिए उतनी ही पुरुषों को भी समझनी होगी।
1: लेकिन सेहतिया जी, जब परिवार नियोजन की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं?
0: देखिए, ये सवाल भी आपका बहुत ही ज्यादा सही है। सबसे पहले तो अमीषा जी ये समझना जरूरी है कि हर जो पति पत्नी होते हैं उनकी देखिए जरूरत जो होती है ना वो अलग अलग होती है। कुछ लोग समय के बाद बच्चा चाहते हैं और कोई कई कई साल तक बच्चा नहीं चाहता है, और किसी का परिवार जो है वो पूरा हो गया होता है। इसलिए सभी के लिए अलग अलग जो विकल्प होता है ना वो मौजूद है।
1: तो हम शुरुआत उन दंपतियों से करते हैं जो कुछ समय बाद बच्चा चाहते हैं।
0: देखिए अमीषा जी, ऐसे जो दंपतियों के लिए ना कई सुरक्षित विकल्प होते हैं, जैसे कंडोम जो गर्भधारण रोकने के साथ साथ कई यौन संक्रमण से भी सुरक्षा देता है। नियमित गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, सरकार मालाएं जैसी गोलियां भी उपलब्ध कराती है जिसका पैसा भी नहीं लगता है। छाया नाम की एक गैर हार्मोनल गोली भी उपलब्ध है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है।
1: और जो इंजेक्शन वाला साधन है उसके बारे में भी लोग पूछते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत जो है ना वो गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। यह एक सुरक्षित विकल्प होता है, लेकिन इससे जो है ना जो ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनकी सलाह और समय के अनुसार ही लेना चाहिए।
1: कई लोग कॉपर टी का नाम भी सुनते हैं, ये क्या होता है?
0: देखिए अमीषा जी, कॉपर टी या IUCD एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है। इसे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी लगाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि रोज याद रखने की जरूरत नहीं होती है। कई साल तक यह गर्भधारण से सुरक्षा देता है, और जब पति पत्नी दोबारा बच्चा चाहते हैं तो इसे निकलवाया भी जा सकता है।
1: लेकिन गांव में कॉपर टी को लेकर बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि ये शरीर में इधर उधर घूम जाता है, कोई कहता है कि इससे हमेशा के लिए बच्चा नहीं होता।
0: देखिए यही सब अफवाहें जो है ना लोगों को सही फैसला लेने से रोक देती हैं। सच तो यह है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सही तरीके से लगाया गया IUCD यानी कॉपर टी सुरक्षित होता है। अगर किसी को कोई परेशानी महसूस हो तो वह जो है स्वास्थ्य केंद्र जाकर सलाह ले सकता है। इसलिए अफवाहों पर नहीं, डॉक्टर, ANM और आशा दीदी की सलाह पर भरोसा करना चाहिए।
1: अच्छा, अगर किसी दंपत्ति का परिवार पूरा हो चुका हो तो उनके लिए क्या विकल्प है?
0: देखिए तब तो स्थायी साधन पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं के लिए नसबंदी की सुविधा है, पुरुषों के लिए भी नसबंदी की सुविधा उपलब्ध है जिसे नो स्केलपल वैसेक्टोमी या NSV कहा जाता है।
1: लेकिन पुरुष नसबंदी को लेकर तो सबसे ज्यादा डरते हैं।
0: देखिए, और यही डर जो है ना, ज्यादातर गलत धारणाओं पर आधारित होता है। कई लोग तो यही सोचते हैं ना मिसा जी, कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाएगा या उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जबकि यह बात एकदम गलत है। जो नो स्केल्पल वैसेक्टमी का हमने नाम अभी लिया है, यह बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे पुरुष की ताकत, मर्दानगी या रोजमर्रा के काम पर कोनो असर नहीं पड़ता है।
1: यानी पुरुष

0: बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
1: परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं है, अगर पुरुष आगे आएंगे तो महिलाओं पर अनावश्यक बोझ जो है ना वो कम हो जाएगा और परिवार के निर्णय अधिक समानता के साथ लिए जा सकेंगे।
0: और अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि बिना योजना के असुरक्षित संबंध बन जाए,
1: तो ऐसी स्थिति में अमीषा जी आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का भी विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग नियमित गर्भ निरोधक साधन के रूप में नहीं करना चाहिए। सही सलाह के लिए स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें, यही सबसे अच्छी बात है।
0: सहतिया जी, सरकार इन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है?
1: देखिए, सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत पहल की है। मिशन परिवार विकास के माध्यम से उन राज्यों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां प्रजनन दर अधिक है। लोगों को अधिक से अधिक विकल्प मिल सकें, इसके लिए अंतरा और छाया जैसे नए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। संस्थागत प्रसव के बाद परिवार नियोजन की सलाह देने की व्यवस्था मजबूत की गई है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जानकारी देती हैं, कंडोम और गोलियां उपलब्ध कराती हैं और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र के साथ भी जोड़ती हैं।
0: यानी कि अब केवल अस्पताल जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता बल्कि सेवाएं समुदाय तक पहुंच रही हैं।
1: और हाँ, इसके अलावा जो है ना, स्वास्थ्य केंद्रों पर तय दिनों में परिवार नियोजन की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे लोगों को सुविधा के लिए बार बार चक्कर न लगाना पड़े।
0: लेकिन सेहतिया जी, आपने शुरुआत में युवाओं की बात भी की थी, अगर सही जानकारी युवावस्था में ही मिल जाए तो शायद आगे चलकर बहुत सी समस्याएं रोकी जा सकती हैं।
1: देखिए अमीषा जी, आपने बात तो बहुत ही सही की है और यही हमें अगली चर्चा में समझना है कि किशोर और युवा इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, सरकार उनके लिए कर क्या रही है और कैसे सही जानकारी उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है।
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सेहतिया जी, एक बात बताइए, अगर कोई दंपत्ति परिवार नियोजन अपनाना चाहता है तो उनके पास विकल्प क्या क्या हैं? कई लोगों को लगता है कि बस नसबंदी ही एक रास्ता है।
1: देखिए अमीषा जी, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को। आज सरकार परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध करा चुकी है। सबसे पहले तो देखिए, हमें ये समझना होगा कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग अलग होती है। अगर पति पत्नी अभी बच्चा नहीं चाहते हैं लेकिन भविष्य में चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिंग मेथड यानी जन्म के बीच अंतर रखने वाले साधन उपलब्ध हैं।
0: जैसे कि
1: सबसे पहले तो कंडोम, बहुत आसान और सुरक्षित बिना किसी दुष्प्रभाव वाला तरीका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह न केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि यौन संचारित संक्रमण यानी STI, HIV से भी सुरक्षा देता है। इसलिए विशेष रूप से उन युवाओं और नवविवाहित दंपतियों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है।
0: और अगर कोई महिला रोज गोली खाना भूल जाए,
1: तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार माला N नाम की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराती है। इसके अलावा छाया नाम की गोली भी उपलब्ध है, जिसे हर दिन नहीं बल्कि निर्धारित समय पर लिया जाता है।
0: और कई बार लोग कॉपर टी का भी नाम लेते हैं।
1: देखिए, जिसे हम IUCD या कॉपर टी भी कहते हैं, सरकार की ओर से IUCD 380A और कॉपर IUCD 375 उपलब्ध हैं। इसे प्रशिक्षित ANM या डॉक्टर लोग लगाते हैं। एक बार लगने के बाद यह कई साल तक सुरक्षित गर्भ निरोधक देता है। जब भी महिला चाहे इसे निकलवा कर फिर से गर्भ धारण कर सकती है।
0: और इंजेक्शन वाला तरीका भी है ना?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल है। सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है, जिसमें हर 3 महीने पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन महिलाओं के लिए रोज गोली लेना मुश्किल हो, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा विकल्प है।
0: और अगर किसी कारणवश असुरक्षित संबंध बन जाए,
1: तब तो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली यानी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें नियमित गर्भ निरोधक गोली के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह केवल आपात स्थिति के लिए है मैडम जी।
0: और जिनका परिवार पूरा हो चुका है?
1: तब तो देखिए स्थायी उपाय उपलब्ध हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए मिनी लैप और लैप्रोस्कोपिक नसबंदी, पुरुषों के लिए नो स्केलपल बैसेक्टोमी जिसे NSV भी कहा जाता है।
0: लेकिन हमारे यहाँ तो पुरुष नसबंदी से लोग बहुत डरते हैं।
1: देखिए डर जानकारी की कमी से पैदा होता है मिश्रा जी। सच्चाई यह है कि नो स्केलपल बैसेक्टोमी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें बड़ा ऑपरेशन कोनो नहीं होता है, जल्दी रिकवरी भी हो जाता है और इससे पुरुष की ताकत, काम करने की क्षमता या वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल शुक्राणुओं का रास्ता बंद करता है।
0: यानी जो बातें लोग सुनते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाता है वो गलत है।
1: एकदम ये बात आपने एकदम सही बोली है, केवल अफवाह है ये सब। इसलिए सरकार लगातार पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है।
0: सिहतिया जी, सरकार परिवार नियोजन के लिए और क्या क्या कर रही है?
1: देखिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, उसमें सबसे प्रमुख है मिशन परिवार विकास।
0: ये क्या है?
1: देखिए जिन राज्यों और जिलों में प्रजनन दर ज्यादा है ना, वहाँ पर परिवार नियोजन की सेवाओं को उपलब्ध करा रही है, उनको कम है तो बढ़ा रही है, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसका विशेष महत्व है। इनका उद्देश्य रहता है कि हर दंपत्ति तक उनकी पसंद के अनुसार सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन पहुँचे।
0: यानी केवल साधन उपलब्ध कराना ही नहीं है।
1: जी हाँ, इसके साथ साथ लोगों को सही जानकारी देना, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक सेवाएं पहुंचाना, प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन की सलाह देना, स्वास्थ्य संस्थानों में निश्चित दिनों पर परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जिससे ये सभी इस अभियान का हिस्सा हैं।
0: और पुरुषों की भागीदारी?
1: देखिए मिश्रा जी, वह भी इस अभियान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं है, बल्कि पति पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी होती है।
0: लेकिन बात केवल शादीशुदा लोगों की नहीं है, आज तो युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है।
1: भारत में इस समय जो है ना मिश्रा जी, 25 करोड़ से अधिक किशोर और किशोरियां हैं। यही देश का भविष्य है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
0: सरकार इसके लिए क्या कर रही है?
1: देखिए सरकार तो इसके लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK चलाया जा रहा है।
0: इसमें क्या होता है?
1: देखिए इसमें क्या है कि किशोरों को केवल प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि उनको पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव, हिंसा की रोकथाम, मासिक धर्म, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सही निर्णय लेने जैसे कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती हैं।
0: यानी ये केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की तैयारी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके लिए एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक यानी किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाया गया है, जहां लड़के और लड़कियां बिना किसी झिझक के सलाह और सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
0: और स्कूलों में भी कुछ कार्यक्रम चलते हैं ना?
1: जी अमीषा जी, बिल्कुल कार्यक्रम चलते हैं। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है।
0: इसमें क्या खास बात है?
1: देखिए इसमें खास बात तो बहुत है। हर स्कूल में एक पुरुष और एक महिला शिक्षक को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है। वो बच्चों लोगों के साथ रोज नियमित रूप से स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक समानता, स्वच्छता और किशोरावस्था जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं, जिससे बच्चे शुरू से ही जानकारी के साथ बड़े हों।
0: सेहतिया जी, आज

0: शादी कब करे, कब माता पिता बने, कितने बच्चे हों और उनके बीच का अंतर कितना हो, लेकिन यह निर्णय सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ होना चाहिए।
1: सेहतिया जी, आज की बातचीत से मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। विश्व जनसंख्या दिवस केवल आबादी गिनने का दिन नहीं है।
0: हाँ मीसा जी, और बिल्कुल परफेक्ट बात कह रही हैं आप, और यही जिम्मेदारी, समानता और अवसर की बात करता है।
1: ये महिलाओं के सम्मान की बात करता है,
0: या पुरुषों की भागीदारी की बात करता है,
1: ये किशोरों के भविष्य की बात करता है,
0: यह स्वस्थ परिवारों की बात करता है,
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताता है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत घर से होती है, जहाँ पति पत्नी मिलकर फैसले लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बच्चों को बेहतर भविष्य देने की तैयारी करते हैं।
0: जब पुरुष जिम्मेदारी निभाते हैं तो महिलाएं सशक्त होती हैं, किशोर सही जानकारी पाते हैं और परिवार मिलकर ऐसे निर्णय लेते हैं, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा।
1: तो श्रोताओं, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए एक संकल्प ले, हम परिवार नियोजन से जुड़े मिथकों पर नहीं बल्कि सही जानकारी पर विश्वास करेंगे। महिलाओं के साथ पुरुष भी बराबरी से स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे, किशोरों को सही जानकारी देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत की पहचान है।
0: और यदि आपको परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों या किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ताओं से अवश्य संपर्क करें। सभी सेवाएं गोपनीयता और सम्मान के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं।
1: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आरजे अमीषा जी। सभी श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जनसंख्या का सवाल केवल संख्या का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य का सवाल है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।
1: श्रोताओं, हम फिर मिलेंगे आपसे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
3: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
2: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
3: जो आज्ञा महाराज।
2: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
3: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
4: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
0: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।
5: पंक्ति यात्रा। कहीं छत थी, दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से। दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजरे शबो रोज कुछ इस तरह। कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी घर में सूरज उगा देर से। कभी रुक गए राह में भी सबब, कभी वक्त से पहले घिर आई शब। हुए बंद दरवाजे खुल खुल के सब, जहाँ भी गया मैं गया देर से। ये सब इत्तफाकात का खेल है, यही है जुदाई यही मेल है। मैं मुड़ मुड़ के देखा किया दूर तक, बनी वो खामोशी सदा देर से। सजा दिन भी रोशन हुई रात भी, भरे जाम लगराई बरसात भी। रहे साथ कुछ ऐसे हालात भी, जो होना था जल्दी हुआ देर से। भटकती रही यूं ही हर बंदगी, मिली ना कहीं से कोई रोशनी। छुपा था कहीं भीड़ में आदमी, हुआ मुझ में रोशन खुदा देर से। प्रस्तुत पंक्तियां निदा फाजली द्वारा रचित है।
0: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।

शोरगुल में भी अगर तन्हाइयों का आलम सर चढ़ के बोले तो समझो आपको मोहब्बत हो गई, और जिन्हें मोहब्बत हो जाए उनका ऊपर वाला ही मालिक है जाने।

0: चल रे तारा।
1: FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे।
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा
1: ये क्या कर रहे हो अंकल, गलत है।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताओ।

0: में साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवर यात्रा को भव्य बनाएं।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
3: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
3: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीरफाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: शुक्रिया सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
1: पंक्ति यात्रा।
2: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो सकी वहां नहीं मिलता। कहां चिराग जलाए कहां गुलाब रखे, छते तो मिलते हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या आजाब है सब अपने आप में गुम है, जबां मिली है मगर हम जबां नहीं मिलता। चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जबां मिली है मगर हम जबां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वही नहीं मिलता।
3: प्रस्तुत पंक्तियां निदा फाजली द्वारा रचित है।
4: बिना बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
5: जैसे संगीत बिना गीत के,
4: पर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
5: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।

0: जाना क्योंकि वापस यही है आना।
1: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
3: महाराज, अब क्या ही बताएं? जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
2: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जाए।
3: ड्रो आज्ञा महाराज।
2: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
3: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
4: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
5: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारस।
6: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
7: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
6: अरे बेटा,
7: ये क्या कर रहे हो अंकल?
6: सुनो
7: गलत
6: तो,
7: है ये।
6: अरे सुनो बेटा
7: अंकल।
8: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
9: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
10: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
11: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
10: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
2: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
4: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
5: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
6: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
5: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
7: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

कौड़ी माया जोड़ी करके जतन छुपाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी करके जतन छुपाए, जन्म जन्म के तोर कमैया चुरवा ना ले जाए ता।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

चाहत से ज्यादा समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

0: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
0: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी, यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: थी।
1: व्हाट अ बिजी डे।
2: डॉक्टर साहब, ये प्रिस्क्रिप्शन में पहली दवा कौन सी लिखी है?
1: कंफ्यूजन, मैं तो बस पेन चला के देख रहा था कि ये पेन चल रहा है कि नहीं भाई। 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।

0: जून 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
5: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
7: 91.2 FM, हेलो बनारस से मैं हूँ आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीशा। और यार, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, वाराणसी इज ऑलवेज बेस्ट। मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद टूरिस्ट को कहते हुए सुना है कि भैया असली सुकून तो बनारस में ही है। और दोस्तों, बनारस के जैसे ही अब आप सब अपने अपने गाँव के बारे में भी ऐसे ही प्राउडली किस्से कहानियाँ पूरी दुनिया को बता सकते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर के जरिए, समझ नहीं आया तो ये सुनिए मेरा।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी

सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

मुहावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है

0: थी।
1: व्हाट अ बिजी डे।
2: डॉक्टर साहब, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ तभी मेरा साला बीच में आ जाता है, मैं क्या करूँ?
1: व्हाट अ जेठालाल सुंदर वाला क्रश। देखो यार, तुम इस बार ट्रक चलाने का काम शुरू कर दो, शायद इस बार तुम्हारी किस्मत साथ दे दे भाई।
3: 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी।
1: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई?
4: पंक्ति यात्रा, यात्रा।
5: कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? तब तक दूसरी कठपुतलियां बोली कि हाँ हाँ हाँ हाँ, क्यों हैं ये धागे हमारे पीछे आगे? हमें अपने पांवों पर छोड़ दो, इन सारे धागों को तोड़ दो। बेचारा बाजीगर हक्का बक्का रह गया सुनकर, फिर सोचा अगर डर गया तो ये भी मर गई, मैं भी मर गया। और उसने बिना कुछ परवाह किए जोर जोर धागे खींचे, उन्हें लचाया। कठपुतलियों की भी समझ में आया कि हम तो कोरे काट की हैं, जब तक धागे हैं बाजीगर है तब तक ठाट की हैं, और हमें ठाट में रहना है, यानी कोरे काट की रहना है।
4: प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है।
6: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
7: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
6: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
8: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
9: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
10: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
9: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, प्लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
8: 91.2 FM हेलो बनारस से मैं हूँ आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीशा, और यार चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, वाराणसी इज ऑलवेज बेस्ट। मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद टूरिस्ट को कहते हुए सुना है कि भैया असली सुकून तो बनारस में ही है। और दोस्तों, बनारस के जैसे ही अब आप सब अपने अपने गाँव के बारे में भी ऐसे ही प्राउडली किस्से कहानियाँ पूरी दुनिया को बता सकते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर के जरिए, समझ नहीं आया तो ये सुनिए। मेरा गाँव

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
5: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
6: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
5: अरे बेटा,
6: ये क्या कर रहे हो अंकल?
5: सुनो
6: गलत
5: तो,
6: है ये।
5: अरे सुनो बेटा
6: अंकल।
7: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: अच्छा नहीं तो जाओ, जाओ, अरे जाओ ना।

0: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
0: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, प्लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
2: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
5: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
6: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
5: अरे बेटा,
6: ये क्या कर रहे हो अंकल?
5: सुनो,
6: गलत है ये।
5: अरे सुनो बेटा।
6: अंकल,
7: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
0: 91.2 FM हेलो बनारस से मैं हूं आपकी बंदी बनारसी आरजी अमीशा। और यार, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, वाराणसी इज ऑलवेज बेस्ट। मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैंने खुद टूरिस्ट को कहते हुए सुना है कि भैया, असली सुकून तो बनारस में ही है। और दोस्तों, बनारस के जैसे ही अब आप सब अपने अपने गाँव के बारे में भी ऐसे ही प्राउडली किस्से कहानियां पूरी दुनिया को बता सकते हैं। मेरा गाँव मेरी धरोहर के जरिए, समझ नहीं आया तो ये सुनिए। मेरा

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.

0: पट्टी
1: क्या
0: है परेशान
1: हाथ छोड़।
0: हाई मैंने हाथा पकड़े तो तूने दांत ऐसे नको ऐसे बता
1: क्या बात करता है।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का
1: बनारसी। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: बिना बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
3: जैसे संगीत बिना गीत के,
2: फिर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
3: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।

0: जाना क्योंकि वापस यही है आना।
1: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
0: थोड़ा थक गया हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। थोड़ा थक गया हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरियां बढ़ा देते हैं, फासले अक्सर रिश्तों में दूरियां बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, जरा अकेला हूँ इस दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपना पन छोड़ दिया है। हेलो बनारस 91.2 FM पे आप सुन रहे बातें कुछ अनकही सी, मेरे यानी अनंता के साथ। आज मैं अपने इस स्पेशल शो में किसी ऐसे स्पेशल इंसान को लेकर आई हूँ।

जिन्हें हर कोई अपना दोस्त माना करता था। ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि ये ऐसे शख्स थे जो सभी के चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट ही देखना चाहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर जी की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किनकी बात कर रही हूँ मैं। इनके जन्म की तिथि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर 1934 इंदौर में इनका जन्म हुआ था और बाद में वो बॉम्बे आ गए और वहीं से इन्होंने की अपनी करियर की शुरुआत। अब कैसा था इनके करियर का सफर बताऊंगी कुछ ही देर में। अभी आप सुन रहे हेलो बनारस 91.2 FM पे बातें कुछ इन कहीं सी और जॉनी वॉकर जी के कुछ बेहतरीन गाने मेरे यानी अनंता के साथ।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: मेरा बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
3: जैसे संगीत बिना गीत के,
2: फिर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
3: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।

0: जाना क्योंकि वापस यही है आना।
1: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
0: हमारे इस वीकेंड स्पेशल शो बातें कुछ अनकही सी में आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जॉनी वॉकर जी को। हेलो बनारस 91.FM पे आप सुन रहे बातें कुछ अनकही सी, मेरे यानी अनंता के साथ। हमारे जॉनी वॉकर जी अपने अटपटे अंदाज से हमें हंसाई दिया करते थे। क्या आपको पता है हमारे जॉनी जी फिल्म इंडस्ट्री में बन रहे हर एक फिल्मों में हुआ करते थे, चाहे फिर वो उनका कोई छोटा सा ही रोल क्यों ना हो। पर क्या आपको पता है एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें एक भी फिल्म मिलना बंद हो गई, इनफैक्ट इनके काम करने का भी मन बंद हो गया। लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक वजह थी, वो था इनका कॉम्पिटिटर। कोई आ गया था जो इनको एकदम पसंद नहीं था, वो इन्हीं की तरह कॉमेडियन था। अब कौन था वो बताऊंगी कुछ ही देर में, लेकिन अभी आप सुनिए दिमाग को एकदम शांत कर देने वाला ये गाना, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। जी हाँ, एंजॉय करिए आप हमारे साथ इस प्यारे से गाने को। हेलो बनारस 91.2 FM पे बातें कुछ अनकही सी सुन रहे आप, मेरे यानी अनिता के साथ।

करते मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा ना जुलम।

पहाड़ है। अरे वाह इतना कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता, ऐसा रे तनम कैसा हो।

अरे मम्मा पापा ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से करता ऐसा।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: 91.2 FM. Hello Banaras पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी. What a busy day.
3: डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं क्या करूं?
2: What a question. तो यार तुम हीटर के सामने बैठ जाओ.
3: और अगर फिर भी ठंड लगे तो?
2: तो यार तुम हीटर ऑन कर लेना भाई.
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी.
2: ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई.

0: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निःशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निःशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निःशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
1: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
3: यात्रा हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।
4: प्रस्तुत पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है।
5: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
6: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
5: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
7: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
8: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
9: महाराज अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
8: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
9: ड्रो आज्ञा महाराज।
8: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
9: महाराज इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
10: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
11: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
12: पक्का बनारसी।
13: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
14: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
13: अरे बेटा,
14: ये क्या कर रहे हो अंकल? गलत है ये।
13: अरे सुनो बेटा।
14: अंकल,
15: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
11: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
12: पक्का बनारसी।
16: बिना बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
17: जैसे संगीत बिना गीत के,
16: फिर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
17: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।

0: जाना क्योंकि वापस यही है आना।
1: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
0: हेलो बनारस 91.2 FM पे आप सुन रहे बातें कुछ अनकही सी, और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जॉनी वॉकर जी को। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका फिल्में करने का मन बंद हो गया था, और ये वक्त वो था जब मशहूर महमूद पूरे इंडस्ट्री में काफी फेमस हो गए थे एज एन कॉमेडियन। जो बात जॉनी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जितने पुराने दोस्त थे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स महमूद जी को ही सराहने लगे थे। उन सभी ने उनके साथ फिल्में बनाना शुरू कर दिया था, उन्हीं को अपनी फिल्मों में एज एन कॉमेडियन लेने लगे थे। इनफैक्ट जॉनी जी का भी ये मानना था कि इंडस्ट्री में अब सिर्फ लोग रोमांस ही करना जानते हैं, अब एक्टर्स में भी कोई टैलेंट नहीं बचा है, सिर्फ एक ही चीज करने में सभी माहिर थे, वो था पेड़ों के पीछे छुपकर प्यार। उन्हें ये माहौल और ये एनवायरमेंट एकदम पसंद नहीं आया, जिससे इन्होंने स्टेप बैक ले लिया और उन्होंने थोड़ी कम फिल्में करने का डिसाइड किया। हेलो ब्रदर्स 91.2 FM पे आप सुन रहे बातें कुछ अनकही सी, और जॉनी वॉकर जी के कुछ बेहतरीन गाने मेरे यानी अनिता के साथ।

0: बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़ गुरु गुमक्कड़ चचा बोकाली

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ दुर्ग।

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़ पक्का।

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ तो

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ दुर्

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
2: बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो, 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ तो

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो
5: बनारस,
6: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस।

0: बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
0: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अ लड़का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, Hello, Banaras.
4: अलर्ट,

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: Hello, Banaras.
1: 91.2 FM. Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras.
3: அல்லட பக்கால

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
2: 91.2 FM, Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
2: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु घुमक्कड़ चचा भोकाली रईसी ठाट टोंगलता।

0: संत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: अर्चन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: Hello,
5: Banaras.
6: 91.2 FM, hello Banaras.
7: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस,
1: हेलो बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ दुर्

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello. Hello.
4: 91.2

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.
1: Allad pakka.

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ दुर्

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, hello, Banaras.
4: अलर्ट,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Allah,

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ तो

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाथ, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़